गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी हां, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा दा जिक्र कीता है, कहंदे ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

0: उसे सियाने प्रभु ने सुजान प्रभु ने मेरे मन की वेदना नु मेरे दुख सुख नु सुने ते ता मैनु बहुत लाहे वंदे फल पदा प्राप्त होए तो बिद नीकी चंगी बिद नाल चंगे ढंग नाल मैनु लाभ प्राप्त होए ऐसे करके मैं हाथ बने ने ओदे अगे जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बहुतेरे तिन तिलनी कीमत जानी प्रभु तो बेमुख होके जिन्ने मर्जी जतन कर लईए होमे दे भरे हुए पदार्था नाल बजे हुए जिन्ना मर्जी भज नठ कर लई ओदी कौड़ी कीमत नहीं ओदी तिल भर भी कीमत नहीं। हां जिस दिन गुरु के हो जाइए जिस दिन ए एहसास हो जावे जिसका दिया पहने खाए तिस्यों आलस क्यों बने माए साहिबां दी सुखमणी रोज पढ़दे सुनदे हो जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे दिहाए सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस तर रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा तिहाइए ध्यान जोग। कितना कुछ उसने बख्शिया है किन्ना कुछ पिया मानना है ओदे सामने सियाणा बनके ना बहो निमाणा बनके ओदे सामने होशियार बनके ना बहो ओदे सामने ता चाकर बन जा सेवक बन जा भोला बन जा ते जिस दिन भोला बन जाएगा पायो बाल बुद्ध सुखरे स्वाद आ जाएगा ओदिया बख्शा का पात्र बन जाएगा। ए भावना लैके हम किछ नाही एक है ओही आगे पाछे एको सोई ऐसी भावना लैके ते जिस दिन ए भावना लैके तुरेगा फिर गुर बोहित वड भागी मिलिया नानक दास संग पाथर तरिया तर जाएगा तरन वाले होना है ते फिर मालक दे अगे सुभावना नाल चुकिया करिए
1: दुख सुख में।
2: You are listening to SeekNet Radio.

कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। साहब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तेनू याद करन, भाई वाह फलाना ता एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

मन विच वस जावे बड़ियां बरकतां। वाहिगुरु दा नाम, प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़ियां वडियाईयां। बड़ा आनंद है कि रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड़ भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितने नहीं मिलदा। साडे सारिआं दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। जदों कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदों कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लेना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदो रोमा विचो अमृत चढ़ता है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचो, पूरे शरीर विचो, स्वासा विचो नाम उचरिया भी जाता है, ते नाम सुनता भी, अपने आप नू अपने आपे विचो ते अपने आले दुआले विचो नाम दियां धुनां प्रतीत हुंदियां ने। इसे शब्द आपां पढ़ रहे हैं ना, साहिबंत कहिंदे ने ना जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल दी गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तो हो गया, सदा ही कीर्तन हुंदा रहे, ये किवें हो सकता? वो एक अवस्था है। कोई उसनू अनहद नाद दी गल करता, कोई उसनू इलाही नाद दी गल कह के करता, कोई किसे ढंग नाल दसदा है, लेकिन यह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहिगुरु हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होंदी, जो आनंद दी अवस्था पैदा होंदी है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजदा है। हर वक्त दी आला दुआला ते मनुख दा अपना शरीर इउं ही जापदा जिवें झूम झूम के गा रहा हो। ते ना ना होवे ते जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई वारी बोझ जापदा, सुनना भी बोझ जापदा, करना भी बोझ जापदा। हिरदे च ना वसे आनंद ना देंदा वगार जापदा, बोझ जापदा। शुरू शुरू में सारा कुछ बोझ ही जापदा। मैं बेनती करा बच्चे नु स्कूल तोरने पहला आड़ी भी करदा। कोई विरले बच्चे होंदे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरे बच्चिया वल वेख के इन्हां दा लिबास बड़ा वधिया, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने, कईआं बच्चिया दे अंदर ए शौक पैदा करता जांदा है। बनेगा बहुत वड्डा अफसर, बनेगा बड़ियां तरक्कियां करेगा, ओह चा लै के तुरदा। नहीं तां आम तौर ते बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लग्गिया बहुते तां रोंदे भी वेखेगा, ओनू एक बारी धक्के नाल स्कूल पहुंचाना पैंदा, उथे जाके पैंदा, एक तां जकड़ के बहना बड़ा होंदा, एक जो कुछ पढ़ाउंदे ने उहदी समझ तो बाहर आउंदा, वो पहला पहला बड़े परेशान होंदे, पहला पहला उसनू कूड़ा एड़ा या एबीसी या जो भी अक्षर हन बोझ जापदे ने। लेकिन चार दिन बाद वह जिहड़ा बोझ है वह ज्ञान का बोध का एक सोमा बन जाता है, फिर उही अक्षर मौज बन जाते, उन्हां अक्षर बिना नींद नहीं आउंदी। जब तक कुछ पढ़ना लवे उहदी मन की शांति नहीं बनती, यह संसारी पद्धत की गल। धर्म के मार्ग से भी ऐसा है, शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापदा, नितनेम भी बोझ जापदा, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापती। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जेडे कदे कदाई इस पासे तुरन वाले ने, ना कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जि अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाओ, वासियां मारदे ने, पासे मारदे ने, किहड़े वेले भोग पवे जान छुट्टे, फसे जापदे। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह बेनती की स्कूल जान वाले बच्चे कई ऐसे भी होंदे ने, ओह वरिया पति पंद्रह पंद्रह बीह बरे बोझ ही ढोंदे ने, पढ़ते भी किताबां नाल मत्था मारदे ने, रोंदे दुखी होंदे हो, कई वारी ओह फेल हो जांदे ते तू तू के अपने आप नूं शर्मो कशर्मी दूसरे नाल तोरदे ने, चा पैदा नहीं हुंदा, शौक नाल नहीं पढ़दे, ते फिर उहनां दे माता पिता उहनां दा आला दुआला कहिंदे पढ़दा तां हैगा, पढ़दा कदे विगार करदा, तू कसीट के तुरिया उहदा वैसे पढ़न वाली गल कोई। बिल्कुल इसे तरह साडी गल,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋਕ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀੜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਕੋਈ ਨੀ ਫੜਨਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭਾ ਤੇ, ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਖਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੀਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ, ਚੀਤ

चाहता ते है तू परमात्मा दे नाल मिलाप, पर किवें तेरा मिलाप परमात्मा दे नाल होवे। जेड़े गुण परमात्मा चाहुंदा है वो ता तेरे विच नहीं हन, क्योंकि चंगा इंसान किसी चंगियाई नाल है, शुभ गुना करके है, शुभ कर्मा करके है। जे शुभ गुण नहीं, शुभ कर्म नहीं, ते वो चंगा किवें हो सकदा है। साहिब कथन करदे ने कि परमात्मा नाल मिलाप ते हर कोई मनु

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेनु अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा? शारीरिक रूप नहीं वेखदा,

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिदे ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

दिन दो मित्रां नूं आपस विच कम पिया। एक मित्र ने कहा, लै मित्रा मेरा कम करना ही, कह लगा चंगा कर देवांगा। समा पै गया, भुल गया, ना कीता। एक दिन मुलाकात

पर तू अपने नाल भी अपराध कर रहे। किस तरह? नाम ना जपे से आत्म काती, जो मनुख नाम नहीं जपते सिमरन नहीं करते वो अपनी आत्मा का आत्मघात करके अपराध कर रहे हैं। किस अपराध

काती अकिर्त कन में कोई ना रखन। विश्वास काती अकिर्त कन, विश्वास काती किसनु कहंदे ने, जेड़ा किसी नु प्यार विच ले आके बसा के मारे, अपना बना के मारे।

मेरे मालिक मैं तेरे नाल जुड़ जा, तेरी गलवकड़ी विच आ जा, तेरे विच समा जावा, मन करके तन करके, अधूरा नहीं, केवल तन करके जुड़िया होवा, मन ना जुड़िया होवे ऐसा भी नहीं। ते जे मैं ऐसे बहाने करा कि मेरा तां मन जुड़िया है, तन की केड़ी लोड़, प्यार तां इस तरह कोई नहीं होता। जिन्हां ने प्यार कीता है महाराज उन्हां दी गल करदे ने, गुरसिखां दी गल करदे ने, भगतां दी गल करदे ने, संतां दी गल करदे ने जिन्हां ने प्यार कीता, ते प्यार कीता ते फिर भरपूर कीता। प्यार च अधूरेपन दी की गल, जब भरपूर प्यार करना है ते फिर तनो मनो प्यार करना है।

भगत नु गुरु प्यार वाले नु बिना गुरु के दर्शन ते गुरु के दर्शन दे भी दो अर्थ ने एक ता दीदार जिहड़ी अखां नाल करने आपां एक दर्शन संस्कृत च फलसफे नु कहिंदे जो गुरु की फलासफी है जे उहनूं नहीं समझिया ते दर्शन सदा अधूरे रह जाणगे। सतगुर नु सब को देखदा जेता जगत संसार डिठे मुक्तना होवे चिचर गुर शब्द ना करे प्या गुर शब्द ना करे विचार जिन्ना चिर गुरु के शब्द दी विचार गुरु के वचना दा अध्ययन गुरु के वचना दी कमाई ना कीती उन्ना चिर केवल आए मथा टेक के तुर गए ता प्यार बढ़ा दूंगा। इस तरह वेखिया गल नहीं बननी अखां नाल गुरु के सोहने दर्शन दे

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जालो ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे ठिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

कतहु सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी हो के मांग तू फिरत भीख, कहूं महादान हो के मांगो धन देत हो।

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

0: ऐसे ध्रुव प्रहलाद जब जैसे माँ राजू पर मैं पूछा क्या लगे बड़ी लंबी कथा माता नाम दिए।
1: हाँ सुन, हरनाक्ष नांदा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान की भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो। भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम नाल जफे पान का हुक्म दिता। प्रहलाद के दिल विच आवाज आई पाल तत्ते थमा नु जफिया आपे तेन रम रख लो। प्रहलाद ने थम नाल जफी पाली पर उदा वाल भी विंगर ना होया। गुस्से विच आके राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
0: मैं भी प्रहलाद बनाऊंगी मां भगवान का जाप कराऊंगी।
2: मेरी मेहनत मेरी औलाद पुठे पार पड़े जा रहे।

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा एक थाल है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ए बाणी असां कलयुगी जीवां दा उद्धार करन

पानी पिता माता धरत महत दिवस रात गुणदाई दाया खेल सगल जगत चंगियां।

दूसरा रास्ता, दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत। साहब सानू दसते ने किते जातरक नू वेख लै, पपीए नू वेख लै, जेड़ा स्वाती बूंद ते पिछे पपी पपी प्या करदा। साहब बाणी विच कहिंदे ने

है उपदेश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नू पिठ दे दिती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता भावे कोई वटा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू नाम जपण वालियां नू सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजै शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

साहब कहते ने मैं वो दर्शन तो कुर्बान जाता बलिहारी हां सदके हां कोली हां जदों ओदा दीदार करदा हां कुर्बान हां उस मालिक दे दीदार तो।

साहब फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच हजूर।

गुरु नानक दी मोर लाके धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब की रचना तो एको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक के गुणा का अथाह बयान करते हुए अपने रचना तो कृपा करते ने ते आंदे ने।

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार दिन तो आंदे ने एक घड़ी दिन समोको बहुत भयारे, ये मेरे मालका एक घड़ी भी एक पल भी तेथों जे मैं विछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, निर्या मार का कर कृपा मेरे ते।

अजय सुरों में पीखे खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमन बिछड़ गया रोवे ते सुर लंक गवाए जिन सीता आंधी डारू आए रोवे पांडव पै मंजूर जिनके स्वामी रहते हजूर रोवे जन्मे जाख गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसा एक पीर अंतकाल मत